जो प्यार पिता देवेगा पड़ोसी नहीं दे सकता, जो स्वाद अंब विचों आवेगा अंबली विचों नहीं। ऐ गुरु के सिख, जो उपकार तेरे ते गुरु कर सकता, संसार दा होर कोई जीव मात्र नहीं कर सकता, ना मां ना बाप ना भैन ना भरा ना कोई रिश्तेदार। गुरु दा उपकार बहुत वड्डा है। भाई साहब कहंदे ने सारा संसार ढूंढ के आ, लहंदे तो लैके चढ़दे तो लैके लहंदे तक नवा खंडा विच घूम के आ गुरु।

भगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असीं अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। ते भगत नामदेव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं, ताकि सानू भगत जी दे इन्हां शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं, मैं अंधलहे की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, पर तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है, वो मेरा आसरा। पाप के तेरे नाम की मैनू सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम की छड़ी हाथ च होने तो बिना मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड्डे हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जद तक तेरे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच है, ओ मेरा अंधले दा आसरा, तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं, मैं गरीब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो, जिसके पास कुछ ना हो। पर कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हां, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप नू गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है फिर मैं गरीब नहीं रह जांदा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी बाणी च आखदे हैं,

दुख पेन सफरिंग मिजरी कहते कहते जहर है लाइफ जी, पॉइजन है दुख, मोहरा मोहरा मैंने पॉइजन। जितने भी साड़ी लाइफ पेन है मिजरी है दर्द है सफरिंग है वो कहते एक जहर है। हुण उस जहर का इलाज की है, मारन लफज वरत्या है, मारन का मतलब हुंदा मसाले पाके दवाई जो तैयार की जावे, अर्ब्स वगैरह पाके जो दवाई तैयार की जावे कहते उस मारन आखते। अगर पेन एंड सफरिंग लाइफ के पॉइजन है तो उस पॉइजन केड़ी चीज मार सकती है? बहुत ज्यादा ध्यान दो, ट्राई टू बी फोकस्ड। दुख मोहरा दुख जहर है, उस जहर नू मारन दे वास्ते ए बड़िया इनकरेजिंग लाइन्स हन, इन दी सेंस कि जिस किसे इंसान दी जिंदगी च अत दुख है सफरिंग है मिजरीज हन उदे वास्ते एक सोल्यूशन दस्या जा रहा है, एक वे आउट है, एक होपलेसनेस सिचुएशन दे विच एक होप दिखाई जा रही है कि तुहानू वरीड होने की लोड़ नहीं, चिंता करने की लोड़ नहीं। अगर जिंदगी च पॉइजन आ गई है, दुख दर्द परेशानियां आ गई हैं, तो महाराज जी आखदे मारन, मारन का मतलब मसाले पाके कीती हुई तैयार दवाई, जड़ी दवाई है उस जहर नू मुका सकती है कहते हैं वो है हर नाम वाहिगुरु का नाम। दुख महारा मारण हर नाम, दुख नू मारण वाला शक्ति रखण वाला एक ही पदार्थ है वाहिगुरु का नाम। सो नानक के घर सारे बोलो केवल नाम, इस पंक्ति नू याद करना है, वी विल गो ऑन रिपीटिंग दिस लाइन एवरी डे। नानक के घर केवल नाम, तो मैं तो बात बोल दिया करो कितने नाल कोई आप दिन थकावट नहीं हो जाएगी। नानक के घर दुनिया दे विच बहुत ज्यादा इग्नोरेंस है, बहुत ज्यादा डार्कनेस है, न समझी है, अज्ञानता है। तो महाराज जी ने पूछिए महाराज इतनी अज्ञानता है इतनी ना समझी है इतना अंधेरा है तो आप जी दे कोल की इंतजाम है इस अंधेरे नू दूर करन दा चानन जगान दा? तो गुरु महाराज जी आखदे हन दीवा मेरा एक नाम, कहिंदे नाम ही एक ओ दीवा है जिहड़ा ह्यूमन लाइफ दे विच्चों डार्कनेस नू सोसाइटी दे विच्चों डार्कनेस नू पूरे ग्लोबल लेवल दे उत्ते डार्कनेस नू इग्नोरेंस नू इलिटरेसी नू जो दूर कर सकता है वो सिर्फ नाम दा दीवा है। कहिंदे मैं नाम दा दीवा लेके आया हूं। अते आप देखते हो जब दीवा बलदा है तो आहिस्ता आहिस्ता केड़ी चीज है जड़ी बर्न हो जाती है, जड़ी सोख हो जाती है, जड़ी खत्म हुंदी है वो तेल हुंदा है, तेल खत्म हुंदा जांदा है। महाराज जी आखदे ने साड़ी सारी जिंदगी दे जड़े दुख हन उन्हां नू समझो तेल दे विच, नाम दा दीवा जगा दो, नाम दी बत्ती जगा दो, नाम दी बत्ती सारे ही दुखां नू बर्न करके रख देगी, जिस तरह जगदा होया दीवा तेल नू बर्न कर दिंदा है।

0: फिर महाराज जी ने पूछी, महाराज धर्म दे विच पूजा दा बड़ा स्थान है, पूजा धूप बत्ती बालो, जल छिड़को, फुल लियाओ, तलियां बजाओ, शंख बजाओ, बहुत किस्म दे नाल लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, आप जी की सुजेस्ट करते हो पूजा किमें कीती जानी चाहिए। महाराज जी आखते हैं साडे घर दे विच नाम ही पूजा है और कोई पूजा नहीं है, नाम जपना ही पूजा है। ऐ बाबा जी दा जो नाम दे प्रति विचार आप जी नूं सुना रहे हैं, कहते हैं
1: पूजा कीचे नाम त्याइए,
0: नाम नूं त्याउणा ही पूजा करना है, जो नाम नहीं त्याउंदा बाकी रिचुअल्स करी जाता है वो बाहर बाहर है, बाहर बाहर है, वो पूजा नहीं। पूजा उदों हुंदी है जदों किसे दा नाम दिल च वस जाए, वो पूजा हुंदी है। कहिंदे हन साडे घर दे विच पूजा भी नाम जपना ही है और कोई पूजा नहीं है, कितना सिंपल है।

0: नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असि नाम जप रहे हैं तो समझ लो असि पूजा कर रहे हैं। अगर असि रोजाना नाम नहीं जपते तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगले पूजा कीजे नाम ते आइए, बिन नावे पूज ना हो। महाराज जी आप जी का तीर्थां दे संबंध की ख्याल है? स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करन दे वास्ते, दुखां दा छुटकारा पाउण दे वास्ते लोग तीर्थां ते जांदे हन, पिलग्रिमेजेस ते जांदे हन, जिन्हां नूं होली प्लेसेस आख्या जांदा है। इस देर इज सच थिंग। महाराज जी आखदे हन साडे वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है, क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साडे वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही। कहते हैं
1: तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है,
0: तीर्थ भी नाम है।

गुरु महाराज ये दसो बहुत लोग वेद शास्त्र सिमरतियां ये लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि असी भी वेद शास्त्र प्राण सिमरतियां आदि पढ़िए। महाराज ये आखते नहीं साढ़े वास्ते नाम जपना ही वेद पढ़ना है, नाम जपना ही साढ़े वास्ते वेद और शास्त्र है। कहते हैं नाम हमारे वेद अर नाद, फिर ये गारंटी करते हैं कि नाम जपन के नाल साढ़े ऐस लोक दे भी परलोक दे भी सारे कार्य पूरे हो जाते हैं।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि तो गुरु की सेवा दे वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां थां थां थां ते सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने नाल हौमे वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चिया उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी है, और किसी गल च गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुनिया है, भगत नामदेव जी आखते हैं नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहिंदे मेरे जीवन का आधार। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दे बाणी दे विचों जो मैं प्रमाण दिते हैं वो ये कहिंदे हैं कि नाम ही नाम है साडे घर दे विच, नानक के घर भूल गए हो, केवल नाम, नानक के घर केवल नाम, कहिंदे साडे घर च सिर्फ केवल नाम है और कुछ नहीं, नानक के घर केवल नाम, नानक दे घर दे विच सुप्रीम टेक्निक जो है, मेथड जो है, वे जो है वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जना उधर सारा संसार रोगी है, उसका एक ही दारू है, एक ही इलाज है, वो की है नाम। संसार दे विच बहुत इग्नोरेंस है, अंधेरा है, तो दीवा की है नाम। लोग अत्यंत लोग तीर्थां ते तुरे फिरदे हन, गुरु जी महाराज कहंदे हन तीर्थ भी नाम ही है, नाम जपना ही तीर्थ इश्नान है, नाम जपना ही तीर्थ इश्नान है। कहंदे नाम ही साडे वास्ते वेद शास्त्र है, नाम ही साडे वास्ते, नाम जपना ही रब की पूजा है, अते नाम जपना ही गुरु की सेवा है। सो यह है नाम की इंपॉर्टेंस, समा समाप्त। आज सिर्फ उस विचार नू साढ़े आठ तक सो हुण तक असा यह सुनिया है कीर्तन का पहला हिस्सा कि गुरु बाबा जी के घर दे विच केवल नाम है, नाम ही दवाई है, नाम ही दीवा है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही पूजा है, नाम जपना ही सेवा है। तो आओ प्यार नाल एक दफा उस पंक्ति नूं हुण गाइए, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले दी टेक छड़ी सोटी, कहिंदे ओ वाहिगुरु तेरा नाम है उस तो बिना मैं चल नहीं सकता, अते जो वाहिगुरु दे उस नाम दी छड़ी तो बिना चलण दी कोशिश करदे हन ओ गिटे गोडे जरूर तड़ाणगे, ओ गिरणगे चोटा खाणगे। सो आओ वाहिगुरु जी दे नाम नू अपना आसरा बनाइए, समझिए अते गाइए, फिर कीर्तन दा थोड़ा जा अगला हिस्सा मैं आपकी सेवा रखांगा।

अपने मन व्यक्तियों नूं जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी दी सारी विचार नूं अपने अंदर टिका के रखो जो सुनया। इतना कुछ सुनन तो बाद नानक के घर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगां नूं खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग्स जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हां दा इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु दी सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिराकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनु प्राप्त करन दी इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो जो कि तमाम चीजां दा इलाज है, एक किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान दे अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिदी है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिदी है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिदी है। जे इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीकर हां नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनु देखो कितनी है। वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनु चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

मर ना जाए इतना विसरत राम। वो की करते हैं, मर क्यों नहीं जाते? बेशक वो मर जान तो कोई फर्क नहीं पैंदा जिन्हां नूं राम विसरिया होया है। मर ना जाही जिन्हां विसरत राम, वो जी के करनगे भी की, सड़नगे तपणगे जलनगे अते होर कर्म पैदा करनगे अपने आप ही। कहंदे बेहतर है मरे ही जान। मर ना जाही जिन्हां विसरत राम, जिन्हां नूं राम विसरिया होया है। नाम बिहून जीवन कौन काम, नाम तो बिना जीवन का कोई भी पर्पस नहीं है, कोई कम नहीं है। नाम बिहून, नाम तो सखना जड़ा जीवन है। कहंदे जीवन कौन काम, नाम बिहून जीवन कौन काम। एक पंक्ति और सुन वाली, आप जी सुन के हैरान जरूर होवोगे। कहंदे हन

बिन नावै की आख्या है, आप आखो बिन नावै सब चोर, सो असि सारे ही चोर हैं। बिन नावै सब चोर, यू मस्ट राइट डाउन दिस समवेयर। बिन नावै सब चोर, जो नाम नहीं जपते वो भले इंसान नहीं हैं, वो चोर हैं। कोई आखे इंसान के मैं कोई चोरी नहीं करता, तो मैं चोर किमें हो गया? मैं अपना काम धंधा करता हाँ, नौकरी करता हाँ, दसा नहों की किरत करता हाँ, ये मैनू चोर किस तरह कह देता है? इसका जवाब कोई मंगेगा ही ना। मैं तो चोरी कभी की नहीं, किसी का एक सेंट नहीं चुराया, तो मैं चोर किमें हो गया? महाराज जी कहते हैं बिन नाव है सब चोर, बिन नाव है सब चोर। हुण किस तरह असी इस चीज का जवाब लभीए कि असी चोर किमें होए? सब चोर एक अद्धा नहीं, सारी दुनिया चोर है। चोर इस तरह है, दातां किसे दियां हैं? ये बना अपनियां लैंदा है कि मेरियां हैं। किसे दी चीज नूं तुसी अपनी बना लो ते कहो ये मेरी है, फिर चोरी नहीं हुई तो होर की होया? किसी ने कोई गहना पहने होया है, तुसी किसे ना किसे टंग दे नाल उसनूं उतार के आप पहन लो ते कहो ये मेरा है, चोरी हो गई? किसे दा घर संभाल लो ते कहो ये मेरा है, चोरी हो गई? ये जीवन ही परमात्मा दा है, असी कहने मेरा है, माई लाइफ। When we say my life, असी इसनु फैब्रिकेट किया है, मैन्युफैक्चर किया है, इसनु बनाया है, क्रिएट किया है, then how come we can say this is my life? जब असी कहने मेरी जिंदगी, किसे चीज एक किसे वस्तु किसे होर दी है, लेकिन असी लाइफ नूं भी कह दिंदे आ कि ए मेरी है, जिसका सानू पता ही कुछ नहीं कि चीज की है, उसनों असी कहने मेरी है। ए चोरी नहीं है? ए तन इंसान सोचता मेरा है, भला इंसान नूं पूछे जाए तेरा किस तरह होया, कदों तू इसनों बनाया सी? तैनूं तां पता भी नहीं जदों ये बन रहा सी, ये तो किसी ने तेनू गिफ्ट दिती है। इस दा डिजाइनर कोई होर है, इस दा क्रिएटर कोई होर है, इस दे पिछे इंटेलिजेंस किसे दी होर है, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन नू चलान वाली विजडम कोई होर है, तू कहना मेरा है? ये किस तरह कह दिता मेरा है? ये क्यों नहीं कहता कि ये मैनू नहीं पता किस दा है? जिस दा है वही इसका मालक है, फिर तू ज्यादा सौखा होवेगा। पर महाराज जी कहते हैं प्राणी जाने ए तन मेरा, प्राणी कहता है तन मेरा है, वस्तु किसे होर दी है, लेकिन ये कहता है मेरी है, तो ये चोरी हो ही जाना हुई, चोरी हो ही जाना हुई। महाराज जी ने आख्या जाके रुख बिरख तन माल, ये जितने भी जितनी भी वनस्पति है, प्लांटेशन है, जिसनों असी अपनी इंडस्ट्री दे विच लैके आने पाव रॉ मटीरियल, ये सारे का सारा रॉ मटीरियल असी खुद बनाया है। लोहा, सोना, कोयला, रबड़ के दरख्त, दरख्त जो लकड़ी पैदा करते हैं, फर्नीचर पैदा करते हैं, रॉक्स जिन्हों तो असी मार्बल लेके आने हाँ, वो असी आप पहला जाके बना के आए हैं। इंटायर वेल्थ जिहड़ी है छुपी पई, वह परमात्मा की साजी हुई है, उसनू फिर बाद च लिया के असी आखते मेरी है। ए चोरी नहीं हुई तो फिर होर की होया? जिहड़ा संत है वह ये कहता है मेरा मुझ में कछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। हुण साडे कोलों कुछ चले जाता है तो असी रोना शुरू कर देने हैं कि चले क्यों गया। जे तुसी पहले दिन तो ही ये सोच के रख दे कि ये तुहाडा है ही नहीं, तो फिर तुहानू तकलीफ किवें होंगी? जिस चीज नूं अपना कहता और अपनी है नहीं, अपनी बना के बैठ गया।

खाम खा और फिर उसने जान उत्ते रोना शुरू कर दिया। इस तो वड्डी ज्ञानता और की हो सकती है। तो मैं आपके सामने पंक्ति पेश की थी, महाराज जी आख दिन जिन कीते तिसे ना जाने, जिसने ये चीजा बनाईया हन, जो इन्हों का मालक है उसनू तो यह जानते नहीं हन। ते बिन नावे सब चोर, नाम तो बिना, नाम जपन तो बिना, नाम जपन तो बिना वो अवस्था नहीं आएगी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, वो जागरूकता नहीं आएगी, तो असी चोर दे चोर बने रहांगे। वैसे भावे असी दसा नहों की किरत भी करते हुई ता भी चोर दे चोर बने रहा, क्योंकि बाबा जी की बाणी ने आख्या। मैं आप जी की सेवा च एक लफ्ज भी गुरबाणी तो बाहर नहीं आखांगा कदे। तो गुरबाणी नू चैलेंज करन दी ना मेरे च ना होर किसे च हिम्मत। गुरु महाराज ने आख्या बिन नावे सब चोर, होर आखते हैं कहते हैं

फिर आते हैं नाम बिना सुना दरबार, जिस दरबार दे विच नाम नहीं है वो सुना है, उथे एम्प्टीनेस, उथे खालीपन, उथे लोनलीनेस, उथे डिप्रेसिवनेस, जिस घर च नाम नहीं है, जिस शरीर च नाम नहीं है वो भी अंदरों सुना है, वो भी अंदरों खाली है, वो भी अंदरों एम्प्टी है, उथे भी लोनलीनेस। आज का कीर्तन इतना ही क्योंकि समय समाप्त हो गया। इन दी नटशेल सारा जो मैं फिर आख दिया, नानक के घर केवल ना, नानक के घर दे विच गुरु बाबा जी दे घर दे विच तीर्थ भी नाम ही है, इलाज भी नाम ही है, अते रोशनी भी नाम ही है, पूजा भी नाम ही है, गुरु दी सेवा भी नाम ही है, अते जो नाम तो बिना है महाराज जी आख देन ओ चोर है, उसका जीवन जल जाएगा, उसका जीवन डराना लगेगा, अते उसका जीवन किसे काम नहीं है। एक पंक्ति में कह के कीर्तन समाप्त कर लगा हां, कहंदे विसरिया जिन नाम ते भोए भार थिए, कहंदे जिन्हां नूं वाहिगुरु का नाम विसर गया है वह धरती उत्ते सिर्फ बोझ हन, जो इस धरती नूं भी तकलीफ दे रहे हैं, धरती उत्ते बोझ हन और कुछ नहीं। सो इतना कुछ याद रखना, कल नूं इत्थों अगां चलांगे, पूरी चुक दी खेवां, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजम्भम सुमम सर्वदा सर्व जुगते दुख

रोगण है, दारू भी समाए, कृपा करे जे अपनी ठाकुर का सो तुम्हारे कहे सुनो जनो।

0: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: Karna Raag to baad, Kalyan Raag da auna subhavik hai. Raag mala vich vi, Gaura au Kandra Kalyana di tarteeb rakhi hai. Kalyan khushi paida karda hai. आत्मा आनंद विचाई प्रभात दी लो दी उड़ीक कर दी है। प्रभु दी याद ने सिमरन ने दृढ़ करा देता कि माया दे सारे जतन किसी काम नहीं। आनंद विचाई आत्मा लालन की शोभा सुन सुन खीवी हुंदी है। शब्द दे सिमरन दी बरकत नाल सदा सद जागत रहिंदी है आत्मा। अते कल्याण सावधान मुद्रा विच ही गाया जांदा है। इस राग विच गुरु रामदास जी अते गुरु अर्जन देव जी ने बाणी उचारी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राग भेद अनुसार कल्याण राग दे अधीन राग कल्याण भुपाली भी आउंदा है। कल्याण अते कल्याण भुपाली दोनों भिन्न अते सुतंत्र राग हन। कल्याण राग विच गुरु रामदास जी दे 6 शब्द हन अते कल्याण भुपाली विच केवल 1 शब्द है। इस राग विच तीबर मध्यम अते बाकी शुद्ध स्वर लगदे हन। इसका बादी सुर गंधार अते समाधि निषाद है। गायन समा है रात का प्रथम पहर। राग कल्याण विच सरवण करो 2 शब्दों का कीर्तन। पहला शब्द है प्रभु मोहे कब गल लावहगे प्रोफेसर करतार सिंह जी। दूजा शब्द गायन कर रहे हैं भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। शब्द है गुण नाद धुन आनंद वेद। सरवण करो प्रोफेसर करतार सिंह जी होरां पासों प्रभ मोहे कब गल लावे हैगे।

कौड़ा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखू होए जहरी कहावई। कौड़ियां विचों पैसे, पैसियां विचों रुपये, फिर सोना, फिर तकड़ा व्यापारी हीरियां दा आखरी स्टेज ते पहुंच गया। भाई साहब जी कहंदे ने हौले हौले तरक्की कीती ते सब तो उच्ची मंजिल ते पहुंच गया ओ व्यापारी, पर शुरू होया कौड़िया तो। कौड़ा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखू हो जहरी कहावई। जोहरी कहाए पुन कौडा को बनज करे, पंच प्रवान में पत सटा घटावे। की वेखिया फिर ओई मैले कुचैले कपड़े पाए, ते थां थां ते होका देंदा फिरदा, ते कौडियां नाल फिर व्यापार शुरू हो गया। इतना हीरियां दा उच्चा व्यापारी हो के, ते जिथों व्यापार शुरू कीता सी ऐसा धक्का लगा कि जिथों व्यापार शुरू कीता सी उथों फिर शुरू होया। लोग हसदे ने, मजाक उड़ांदे ने, कर्जे देण वाले सिर ते खड़े हो जांदे ने, लैण वाले भी। गुरु की साध संगत ओ मुसीबत विच फस जांदा है बंदा। लोग कहंदे ने ओ आखिर तू कीता की? भाई साहब जी अपनी गल ते आउंदे हन, बचन कर दें।

लोक पर लोक बिखे ऊंच पद पावई। छाड़ गुरुदेव आन देव को सेवक होए, निफल जन्म कपूत होए हसावई। लोकां दी सेवा करदा, संतां दी सेवा करदा, देव देवतियां नूं मंदा होया मनुख उच्चे ते सुच्चे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां विच पुज गया। पर की वेख्या, जेड़ा सीस गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अर्पण हो गया, कोई थोड़ी जी दुख सुख आ गया ते फिर थां थां ते भटकन लग पिया। कदी किसे संत कोल, कदी किसे कोल, कदी किसे देवी कोल, कदी किसे देवते कोल, ते फिर लोग मजाकां करदे ने, आ देखो गुरु का सिख किथे किथे भटकदा फिरदा है। आ थोड़े दिन ही होए है, एक प्रेमी गुरसिख नू पुछया की हाल चाल है, कहिंदा कम तुर नहीं रहा, बड़ा परेशान हां। कहिंदा एक चिट्ठी आई है, ए भेजी है साईं बाबा वालिया ने, आख्या एदा जाप करो तुहाडे मन नू भी शांति मिलेगी, ते नौ निधियां 18 सिद्धियां आउणगियां। ते मैं क्या भोले मनुख की करदे फिर? कहिंदा जिथों नौ निधि मिले असी ओदा ही जाप करना है ना। एक बारी प्यार नाल बोलिए, ते नाल लिखिया सी एदियां 500 कापियां छाप के फिर होर ना पासे वंड। नबज वेख लैंदे ने ए सुहागण किवें अपने मालक नालों टुटे ते नूं पतित करिए। ते थां थां ते ऐसियां दुकानां हन, गुरसिख नूं बड़ा सावधान होना पैंदा है, जिवें पतिव्रता स्त्री सावधान हुंदी है। मैं क्या गुरमुखा, स्त्री सौरे नूं भी मत्था टेकदी है, जेठ देवर दा भी ध्यान रखदी है, ओदा भी सत्कार करदी है, किसे संत नूं दुरकारना नहीं। सत्कार अदब हर धर्म दा करना है, पर जो स्त्री अपना मन ते तन अपने मालक नूं देंदी है, वह किसे दूजे नूं नहीं दे सकदी। इसे तरह अदब सारियां दा कर, पर अपनी जड़ नूं ना भुल, नहीं तां मजाक दा कारण बन जाएगा। तू अज साईं बाबे नूं मनेगा, कल तेरे बच्चे थोड़ा बहुत ए भी सिखी तो पतित हो जाणगे ते मुनकर हो जाणगे। ना सिख ना हिंदू ना गोरे कुछ भी नहीं रहणगे, ते गुरु की साध संगत। गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने, ए गुरु आप ही चाहे ता पल्ला पकड़ाए, नहीं तां असी सिख तां छड़ जांदे आ गुरु। बाबा फरीद जी भी कहंदे, फरीदा ढूंढे दिए सुहाग को,